0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ। गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्युज एफएम 105.1।
1: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
2: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

0: Good News FM 105.1 MHz.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम झोलाभित्र के छ।